हेलो मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्रीकाल, आदाब, जय श्री सीताराम। 15 जुलाई बार है बुधवार और समय हो रहा है 7:30। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति गीत से और कार्यक्रम में बात करेंगे आज के दिन की विशेष घटनाओं की और खेल जगत से।

से युद्ध 1947 और 48 में वो शहीद हो गए। उनकी निर्भीक और बहादुराना नेतृत्व क्षमता के लिए उनको नौशेरा का सेरा भी कहा जाता था।

आप सुन रहे हैं 5BVR रेडियो के 103.1 FM पर भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम। मैं बात कर रहा हूँ 15 जुलाई की। 15 जुलाई ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 15 जुलाई वर्ष का 196वां और लीप वर्ष में ये 197वां दिन है। साल में अभी 169 दिन शेष रह गए हैं।

पांच T20 मैच की श्रृंखला को बुरी तरह से गंवा दिया। 5-0 से इंग्लैंड ने इस सीरीज को जीत लिया। अभी

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक विशेष रिकॉर्ड बना दिया जब उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक का विकेट लेकर वनडे में 150 और टेस्ट मैच में 200 और अंतर्राष्ट्रीय T20 में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले एक भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं।

0: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए तो उनके और ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री के बीच हुए समझौतों की एक छोटी सी मुलाकात।
1: A roadmap for sport collaboration between Australia and India to strengthen our long-standing partnership. This roadmap will support practical cooperation in...